0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
2: Don Millions Entertainment, Problem Promotion. I'm a big DJ. It's Marvin.
3: And my miss boy, Trap Nigga.
4: Big Governor on the beat.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकेरे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला
1: इटी यूनियो और रेडियो
3: I want to tell you that I love you.
4: Love addiction. Kickstart the body.
3: I want to tell you that I miss you.
4: La-

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो